कल घोर समुंदर में बूटत थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार जह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो, जग तारण को

0: ਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ
1: ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ
0: ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਈ
1: ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ
0: ਗੋਰੀ ਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ
1: ਜਿਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ
0: ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭ ਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ
1: ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾ ਬਿਨ ਪਾਣੇ ਕੇ ਨਾਹੀ
0: ਜੇਤੀ ਸਿਰ ਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ
1: ਮਤ ਵਿਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ
0: ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭ ਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ
1: ਹੋਰ
0: ਖੰਡਾਵੇ ਜਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ
1: ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਈ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗਲੇ
0: ਜੇ ਤੁਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ
1: ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਤਰੇ
0: ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ
1: ਇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ
0: ਸੁਣੇ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾ ਸੁਣੇ ਧਰ ਤਵਲੇ ਆਕਾਸ਼
1: ਸੁਣੇ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ
0: ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
1: ਸੁਣੇ ਈਸ਼ਰ ਵਰਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣੇ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ
0: ਸੁਣੇ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣੇ ਸ਼ਾਹ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ
1: ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
0: ਸੁਣੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਸੁਣੇ ਅੜਸਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ
1: ਸੁਣੇ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ ਸੁਣੇ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ
0: ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
1: ਸੁਣੇ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ ਸੁਣੇ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
0: ਸੁਣੇ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹੂ ਸੁਣੇ ਹਾਥ ਵੈਸ ਗਾਹੂ
1: ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
0: ਮਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ
1: ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮਨੇ ਕਾਵੇ ਕਰਨ ਵੀ
0: ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ
1: ਮਨੇ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਮਨੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ
0: ਮਨੇ ਮੋਹ ਝੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮਨੇ ਜਮ ਕਾ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ
1: ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ
0: ਮਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਗ ਨਾ ਪਾਏ ਮਨੇ ਪਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ
1: ਮਨੇ ਮਗ ਨ ਚੱਲੇ ਪੰਥ ਮਨੇ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧ
0: ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ
1: ਮਨੇ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਮਨੇ ਪਰਵਾਰੇ ਸਦਾਰ
0: ਮਨੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਨੇ ਨਾਨਕ ਭਵੇ ਨ ਭਿੱਖ
1: ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ
0: ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ
1: ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰਾ ਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ
0: ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਤੇ ਕਾ ਕਰਨੇ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ
1: ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ
0: ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ
1: ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਪਾਰ ਤਲੇ ਕਵਣ
0: ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ
1: ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ
0: ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਣ ਸਵਾਲ ਲਿਓ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਦਾ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਪੂਤ
1: ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ
0: ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਨ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ
1: ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਅਸੰਖ ਜਾਪ ਸੰਖ ਭਾਉ ਸੰਖ ਪੂਜਾ ਸੰਖ ਤਪਤਾਉ
1: ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ
0: ਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਸੰਖ ਸਤੀ ਸੰਖ ਦਾਤਾਰ
1: ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਖਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੋਲੇ ਬੁਲਾਏ ਤਾਰ
0: ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਨ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ
1: ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ
1: ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਏ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲਬੜ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਏ
0: ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ ਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਏ
1: ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਪਖਾਏ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਭਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਨ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ
1: ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਸੰਖ ਥਾਮ ਗਮ ਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ
1: ਅਸੰਖ ਕਹੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਲਾ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ
0: ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਨ ਅਖਰਾਂ ਸਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਨ
1: ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸੇ ਨਾਹੀ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤੇ पाए।
0: जीता गीता देता ना हो बिन नावे नाही को थाओ।
1: कुदरत कवन का विचार वारिया न जावा एक बार।
0: जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार।
1: हरिए हाथ पैर तंदे पानी धोते उतरस खे।
0: मूत प्रीती कपड़ होए दे साबुन लिया हो धोए।
1: हरिए मत पापा के संग ओ तो पै नावे के रंग।
0: पापी आखन नाए कर कर करना लिख ले जाओ।
1: आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आबो जाओ।
0: फिर तप दया दान जे को पावे तलका मान।
1: सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतर गह तीरथ मल।
0: सब गुण तेरे में ना ही कोई वैन गुण कीते भगत ना होए।
1: स्वस्थ आख बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन जाओ।
0: कवन सो वेला वक्त कवन कवन थत कवन वार।
1: कवन सिरती महो कवन जित होआ आकार।
0: वेल ना पाईया पंडती जे होवे लेख पुराण।
1: वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान।
0: इतवार ना जोगी जानर तुमाहु ना कोई।
1: जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने।
0: क्यों कर आखा क्यों साला ही क्यों वरनी क्यों जाना।
1: नानक आखण सब को आखे एक दो एक सियाना।
0: वड्डा साहिब वड्डी नाई की ताजा का हो गए।
1: नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सोए।
0: पता ना पता लाखा गा साया गास।
1: ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात।
0: 618 कहन कतेबा सुलवे कतात।
1: लेखा होए ता लिखी है लेखे होए
0: बड़ास। नानक वड्डा आखी आपे जाने आप।
1: साला ही सलाह एकी सुरत ना भाई।
0: नदियां ते वा पवे समुंद ना जानी है।
1: समुंद सा सुल्तान गहरा सेती माल तन।
0: पीले तोलना हो जित समन हो ना विसराए।
1: अंत ना सिफती कह ना अंत अंत ना करने दे ना अंत।
0: अंत ना वेखन सुन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत।
1: अंत ना जापे कीता आकार अंत ना जापे पारा
0: अंत कारण कीते बरलाए ताकि अंत ना पाए जाए।
1: एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिए बहुता।
0: वड्डा साहिब ऊंचा था ऊंचे उपर ऊंचा ना हो।
1: केवड़ ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने।
0: जेवड़ा जाने आप नानक नदरी करमी दात।
1: बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए।
0: किते मंगे जूद पार किते अगणत नहीं विचार।
1: केते खप टुटे बेकार केते लैले मुकर पाहे केते मूरत खाई खाए।
0: केते दुख पू सद मारे पेदा तेरी दातार।
1: बंद खलासी पाने होए होर आख न सके कोई।
0: जे को खाए काखन पायो जाने जेतिया में खाए।
1: आपे जाने आपे दे आखे से पे गई।
0: जिसनों बख्शी सब साला नानक पातशाह ही पातशाह।
1: अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये मूल भंडार।
0: मूल आवे मूल ले जाए मूल पाई मूला समाये।
1: अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान।
0: मूल बख्शीश अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फरमान।
1: अमूलो मूल आख्या न जाए आख आख रहे लिबराए।
0: आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे बखियान।
1: आखे वरमे आखे इंद आखे गोपी ते गोविंद।
0: आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध।
1: आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव।
0: केते आखे आखण पाए केते कह कह उठ उठ जाए।
1: केते कीते होर करे ता आख न सके केई।
0: जे वड़ भावे ते वड़ होए नानक जाने साचा सोए।
1: जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गवारा गवार।
0: सो दर किया सो कर किया जितबे सर्व संभाले।
1: वाजे नाद अनेक संखा केते वावन हारे।
0: केते राग परी सो कहियन केते गावन हारे।
1: गावे तुन्नु पाण पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दवारे।
0: गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म बिचारे।
1: गावे ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे।
0: गावे इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले।
1: गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध बिचारे।
0: गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे।
1: गावन पंडित पढ़ रखी सर जुग जुग बेदा नाले।
0: गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले।
1: गावन रतन पाए तेरे 68 तीरथ नाले।
0: गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे।
1: गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे।
0: सही तुद नु गावे जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले।
1: और केते गावन से में चितन आवन नाने क्या विचारे।
0: सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई।
1: हैपी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई।
0: रंगी रंगी भाती कर कर जनसी माया जिन हो पाई।
1: कर कर वेखे कीता अपना जिवते सी बढ़िया।
0: जो तुद भावे सोई कर सी हुक्म न करना जाई।
1: सो पात साहो साहा पात साहो। साहेब नानक रहन
0: मंदा संतोषन पचोली ध्यान के करह विभूत
1: किंथा काल कवारी काया जुक्त डंडा प्रतीत
0: आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत
1: आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को
0: वेद भंडारण घट घट वाजे नाद
1: आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरासाद
0: जो दो कार चलावें लेखे आवें भाग
1: आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को
0: एक माई जुगत वे आई तिन चेले परवान
1: एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान
0: जिस भावत वे चलावे जब होवे फुरमान
1: ओ वेखे उना नजर ना आवे बहुता एहो वडान
0: आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
1: आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो
0: कर कर विखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार
1: आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
0: एक दूजी बोला खोहे लाख होवे लाख वीस
1: लाख लाख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश
0: ई त्राय पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस
1: सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस
0: नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस
1: आखण जोर चुपे ना जोर जोर ना मंगण दे ना
0: जोर जीवन मरण जोर जोर न राज माल मनसूर
1: जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुक्ति छुटे संसार
0: जिस हाथ जोर करे वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए
1: राति रुति तिथि वार पवन पानी अग्नि पताल
0: तस्वे धरती ताप रखी धर्मसाल तस्वे जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेको अनंत
1: कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार
0: सोहन पंच प्रवान अदरी कर्म पवे निशान
1: कच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए
0: धर्म खंड कायो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म
1: केते पवन पानी बैसंतर केते कान महेश
0: केते बरमे काटत घड़िए रूप रंग के वेश
1: केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश
0: केते इंद चांद सूर केते केते मंडल देश
1: केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश
0: केते देव दान मुन केते केते रतन सुमंद
1: केतिया खानी केतिया केते पात नरेंद्र
0: केतिया सुरती सेव केते नानक अंत न अंत
1: ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाथ नोद कोड आनंद
0: कर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाटत घड़िए बहुत अनूप
1: ताकिया गल्लां कथिया न जाए जे को कहे पिछे पछताए
0: तिथे घड़िए सुरत महात्मा न बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सदा की सुध
1: कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर
0: सहजोद महाबल सूर तन मैं राम रहया भरपूर
1: तिथे सीतो सीता मेमा माहे ताके रूप न कथने जाए
0: नाल मरण ठागे जाहे जिनके राम वसे मन माहे
1: तिथे भगत वसे के लो करे आनंद सच्चा मन
0: सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल
1: तिथे खंड मंडल पर पंड जे को कथे ता अंत न अंत
0: तिथे लो लो आकार जब जब हुक्म तबे तबकार
1: वेखे विकसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार
0: जब पहारा धीरज सुनियार हरण मत वेद हथियार
1: पाओ खला अगन तपकाओ पांडा पाओ अमृत।

0: तू जग में आया।
1: हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया।
0: गुर प्रसादी बुझिया तां चलत हुआ चलत नदरी आया।
1: कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी तातू जग में आया।
0: मन चाओ पिया प्रभागम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया।
1: हर गाओ मंगल नित सखी है शोक दुख ना व्यापाए।
0: गुर चरण लागे दिन सपागे अपना फिर जापे।
1: अनहत बानी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस पुगो।
0: कहे नानक प्रभाप मिलिया करन कारण जोगो।
1: ए शरीरा मेरे आ इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया।
0: की कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया।
1: जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना बसाया।
0: गुर प्रसादी हर मन बसिया पूरब।

नानक ते जन ना मिले खिन मैं निज कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृश्य कशुण आवे तिस तत्काल दिस प्रगट आवे जाको अपनी करे बख्शीस ता कर ले खणगणे जगदीश जियो अपने सब दिस की रास घट घट पूर्ण बन प्रगास अपनी बन दया बनाई नानक जीवे देख बड़ाई इसका बल ना इस हाथ करण क्राम सर्व को नाथ आज्ञाकारी वपरा जियो ज्योतिष पावे सोई फुनथियो कहूँ उच नीच मैं बसै कहूँ सो घर करंग हसै।

नानक सुजन सदा रोग जो मंदर को थामे थमन तो गुर का शब्द मणि हस्तमन जो पाखान नाव चढ़ तरे प्राणी गुर चरण लक्त निस्तरे जो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन दीख मनो विकास जो माम ध्यान में मार्ग पावे तो साधु संग मिल जोत पटावे तिन संतन की बाछ तो नानक की अड़ो चाबूरे मन मोर काय बिलाए प्रभु लिखे का लिखिया पाई दुख सुख प्राप्त देव नहार या वृत्याक तू ते सजितार जो कुछ करे सो इस कुमान भुला काय फिर जाने कौन बस ताई तेरे संग लपट रस लो बताऊ राम नाम जा फिर दे माए नानक पास सती कर जाए सो कर को लैन तू आया राम नाम संदन कर पाए ताजे मान ले मन मोले राम नाम हृदय में तोले लाल खेव संता संग चाल या वृत्या भी खे जंजाल तन तन कह सब कोय मुख उजल दर कह सोए वपार बुलाव फारे नानक ताके सतबल हारे चरण साध गए धोए तो पे और साध को अपना जियो अरप साधु को अपना जियो यो साध की धूर करो स्नान साध प्रजाई कुरबान साध सोट भागी पाई साध संगर कीर्तन गाई अनक बिगनते साधु राखे हर कुण गाय अमृत चाखे उठ गई संता दरिया सर्व सुख नानक ते पाए मृत को जीवालन हर भूखे को देवते दार सरुण धन जाके दृष्टि माए प्रोड़ के कल न पाए साव किस तिसका तो करने जो गए तिसमें दूसर हुआ न हो गए जब जन सदा सदा दिन रहनी साव तो निर्मल करणी कर कृपा जी को नाम दिया नानक सुय निर्मल थी है जाके मन गुर की भरती तेज ने आवे अर्प चीज भगत भगत सुनिए तैलोए जाके हृदय को सच करनी सचता की रहते सच हृदय सतमुख सच दृढ़ साचा कार सच वर्ते साचा पासार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किस तरह कुंते प्रभिन्न तिसे भुजाए नानका जिस हो सो परसा नष्ट पति अवनाशी ब्रह्मन मेरा अखमानो की तू बिर त्याग तिसे परे ने किस को सरुण अंतरे को सोए आपे बिना आपे दाना गहर कमीर गहिर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर को बिंद कृपण दान दयाल बख्शान दे सातरे की चरणी पाओ नानक के मन अर नाओ मन सा पूर्ण सरना जोग जो कर पाए सोई होग हरण परण जागने तरफ और तिका मंत्र जाने हो रे अंतरु मंगल सा जाके सर्व थोक नहीं करता के राज में राज जोग में जोगी तब मैं तुम्हें सर्व किस में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाए नानक तिस प्रभु अग्नि अंत न पाए जाकी लीला कीमत न आए सकल देव हरे हो गाय पिता का जन्म के जाने पूते सगल पुराए अपने सूते सुमत ज्ञान ते अंजन दे जन दास नाम ते आवैसे ते गुण मैं जाको फरमाए जन्म मेरे फिरे आवे जाए ऊच नीच जिसके आसान जस नावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जा के रंग नाना भीख रे करंग नाना विघ्न विस्तारे प्रभु ना सी एक अंकार नाना चलत करे खिन माए पूर्व पूर्ण सब उठाए नाना विद गुण बनाए अपनी कीमत आपे पाए सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान करनाओ नाम कुतारे सगले जंत नाम कुतारे खंड ब्रह्मांड नाम कुतारे समृत वेद पुराण नाम कुतारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम कुतारे गास्पताल नाम कुतारे सगले कार नाम कुतारे पुनिया सफाव नाम के संग कुतरे संसारण कर कृपा से अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सोजन कथ पाए रूप सज्जा का सत स्थान सत्व पुरख सत्वरुख प्रधान करतू सत सा जाखी वाणी सतपुरुख समय समाणी सतकर्म जाखी रचना सत मूल सत सत उत्पात सतकरणी निर्मल निर्मली जिसे बजाय तिसे दा फली सतनाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सतनाम गुरते पाए सत वजन सत उपदेश सत ते जन जागृत प्रोए सत नृत पूजे दे कोए नाम जब ता की गत होए आप सत गया सब सत आपे जाने निमित गाते जिसके सिर सो करने हारे अपना बूझ करत विचार करते की मित न जाने की आ नानक जो तिस भावे सो वरती आ विस्मण विस्म भय विस्माद जिन बुझा दिसाय स्वाद प्रभु के रंगराज जन रहे गुरु के वचन पदार्थ लय दाते दुखट नार जाके संग तरे संसार जन का सेवक सोवड़ भागी।

0: जकरे सब कोए तां जय जकर सब कोए ओ ऐसी भगत बन आई मेरा मन ऐसी भगत बन आई
1: ऐसी भगत बन आई
0: हर बिन खिन पल रह ना सको
1: हर बिन खिन पल रह ना सको
0: हो हर बिन खिन

मेरा मन ऐसी पगत बन गया, मेरा मन ऐसी पगत बन गया, मेरा मन ऐसी पगत बन गया, मेरा मन ऐसी

सुवेला हुए जन्म सुवेला सब जाए मिलो सतगुर को मेरी जिंदड़ी है जो हर घर ना दृढ़ावेरा हर जग में आ खिन ढिल ना की गई मेरी जिंदड़ी है मत के जापे सहा आवे केला

सेन लिया तिन लिया अंचल लाए, तिन लिया अंचल लाए। गुरु प्यारी सत्संग जी, बाणी दे कतन सार आप जी ने सुनिया, जैसे रहन पुराण उठ सल से प्रभात, क्या तुरता गिरस्त स्यों सब फुलना की बागात। ये जीवन सफलता होना जे पंजा प्यारियां कोल जाके रहत समझ के नाम दृढ़ करा के संगत च बह के नाम जप के जीवन ता सफल होना। इसे प्रथाएं इस समागम विच अमृत संचार रात नूं है। पंजां प्यारियां ने तुठना है, पंजां प्यारियां दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी विराजमान होके, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान होके अपना बनाउणगे। जिन्हां जिन्हां ने गुरु साहब का बनना है, गुरु साहब नूं अपना बनाउणा है, आप तैयार वर तैयार होके रात नूं रकाबगंज साहिब शाम नूं 4 बजे रकाबगंज साहिब जी तैयार वर तैयार होके पंजां ककारां दे धारनी बन के उत्थे पहुंच जाओ ते तरले पा के ये दात लै लो जी। रात नूं रहन सवाई हुई है रकाबगंज साहिब जी, आप जी सारिआं ने पहुंच के लाहे लैणे जी।

मेरा तन मन ठंडा आओ सजन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा हो त्राहे त्राहे कर शरणी आए जल तो कृपा कीजै कर गए ले हो दास अपने को

दर दिस ढूंढण जा देवन हार दातार प्रभु निमख ना मने बसा लालच झूठ विकार बहुत